सर्वगत सर्वव्यापक सभी इंद्रियों को व्याप्त करके स्थित हूँ। मैं सदैव समता में स्थित हूँ। न मुझ में मुक्ति है और न बंधन। मैं चैतन्य रूप आनंद हूँ। शिव हूँ, मैं शिव हूँ।

मैं हूँ रेरी और मैं प्रेजेंट करने आई हूँ उन रंगों की उड़ान. और यस, वेरी इंटरेस्टिंग, उन रंगों की उड़ान. उन रंगों में से एक रंग ये भी होता है कि वो उनमें, उन रंगों में से एक रंग ऑब्स्टिकल कोर्स भी होता है. एंड फॉर सम रीज़न आज बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ हो रहा है यहाँ पर. और यस, I'll just need a few more moments before I can come back and present, because I have to work out a few things here. I'm having some technical issues. Nothing is working, so either it's actually kuch asked for help as well, but we haven't been able to figure out. Maybe I just, just give me a few moments and I'll come back, and then we'll see ki aaj kis kaun se flow mein hame kaise manage karna hai. So just a few more moments. Tab tak aap ye Gayatri Mantra इसमें इसको अब्सॉर्ब कीजिए. और जस्ट अ फ्यू मोर मोमेंट्स.

ये कुछ भी नहीं होती इश्यूज और या सो यस आई हैव टू वर्क विद व्हाट आई हैव गॉट हियर. तो थोड़ा टाइम निकल गया है इसलिए थोड़ा सा कुछ बीच में से स्किप करने वाली हूँ द थिंग्स दैट आई हैड प्लान्ड और कुछ चीज़ें बीच में इंक्लूड करने वाली हूँ. और यस सो आई एम गोना स्टार्ट विद द फर्स्ट सॉन्ग, पुराना सॉन्ग, ओल्ड जो सॉन्ग्स हैं उनसे. और ये जो सॉन्ग है, ये जो मैं प्ले करने वाली हूँ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत ही सुंदर सा है. पर इसकी लिरिक्स तो जो है वो है, पर आई गॉट सम रियली गुड मेमोरीज इस सॉन्ग के साथ. मेरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स, शी यूज़ टू सिंग दिस सॉन्ग व्हेन वी वर इन हाई स्कूल. और जब भी अच्छा सा मौसम होता था तो आई यूज़ टू आस्क हर कि ये सुना, और वो सुनाती थी और बड़े बहुत अच्छे से तरीके से सुनाती थी. एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट हर, तो आई थॉट चलो आई विल शेयर. और आई डोंट नो फॉर सम रीज़न, फॉर दिस रीज़न, ये जब भी अच्छा सा मौसम होता है बारिश का, तो दिस इज़ द सॉन्ग दैट कम्स टू माई माइंड. सो आई थॉट आई विल शेयर. सो होपफुली ये चलेगा. लेट्स होप. ओह नो, नॉट दिस वन, सॉरी. This one.

93 MDR, you're listening to Reri, और मैं प्रेजेंट कर रही हूँ उन रंगों की उड़ान. एंड यस, दैट वाज सुहाना सफ़र. बहुत बहुत स्वीट सा ये सॉन्ग है, और जो इसकी लिरिक्स हैं वो तो हैं अच्छी, पर इसमें जो नेचर है, आई डोंट नो, ये मुझे ऐसा लगता है कि जो इस उस सॉन्ग में जो नेचर है वो बहुत बहुत इनोसेंस में वो फील में आती है. लाइक वैसे भी प्योरिटी, यूजुअली नेचर के साथ वो प्योरिटी वाली फीलिंग ज़्यादा आती है, पर इसमें इनोसेंस, आई डोंट नो, वो फीलिंग इसमें आती है. एंड या माय फ्रेंड शी यूज्ड टू सिंग दिस, बड़े आई मीन कभी भी एवरी टाइम आई वुड आस्क हर, तो शी यूज्ड टू सिंग उसको. या वेरी ब्यूटीफुल मेमोरीज विद दिस सॉन्ग. और यस, सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन. एंड बिफोर दैट वन, तो आई वॉन्टेड टू एक्नॉलेज, पिछले एपिसोड में देर वॉज अ टेक्स्ट दैट वी हैड रिसीव, जो यहाँ पे द प्रेजेंटर्स हियर, दे हैड रेड दिस, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्नॉलेज. सो वेल, इफ यू ट्यून्ड इन टुडे एज वेल, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस टेक्स्ट यू मेड. सो द टेक्स्ट वॉज, यू मेड माई ट्वाइलाइट ड्राइव मोस्ट इन्जॉयबल. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, एंड प्लीज डू लेट अस नो इफ यू ट्यून्ड इन today as well. Thoda sa it's a bit bumpy today, but yeah, we are trying our best. And yeah, thank you for sharing. All right, so I'm gonna play the next one now. And ye jo song hai, ye I think sabne enjoy kiya hai kisi na kisi time pe, aur hamesha hi I think enjoyable, ye kafi mazedar lagta hai. So I'm gonna play this one. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la